0: your song. Only on City FM 89. It's 8 a.m.
1: You're listening to City FM 89.
2: Trending today.
3: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM
4: 89.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
11: यू गॉट मी गोइंग क्रेजी.
12: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
1: सिटी एफएम 89.
13: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
4: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन.

0: You're listening to City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89. Hire Kanaya. No frost IoT refrigerator. Jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Shared bundles. Wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
5: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
5: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
6: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
7: बंद करो ना ढक्कन.
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरी.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
2: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Trending today.
3: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million USD worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
2: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
8: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश.
11: City FM 89.
12: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
13: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
14: City FM 89. We're playing your song. Wow.
15: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
16: Welcome back, everyone. Your last song was After All by Carly Rae Jepsen. All right, so it's time for me to put on my nerd cap because it's time for Making You Smarter Every Day. Bet you didn't know these facts. First one up. Why do bananas glow blue under UV light? Well, bananas may look completely normal, but under ultraviolet or UV light, ripe bananas actually glow a bright blue. This happens because chlorophyll in the peel breaks down as the fruit ripens, creating compounds that naturally fluoresce. Scientists use this glow to study how fruit ripens, even though our eyes can't normally see it. Next one up. Why can't you tickle yourself, if you've ever asked? Well, that's because your brain can predict your own movements before they happen. Since there are no surprises, your brain ignores the tickling sensation. When someone else does it, though, your brain can't predict exactly where or when you'll be touched, making you laugh. And last but certainly not least, I've asked this question, why do flamingos stand on one leg? Flamingos are famous for doing that, but you should know that they're not actually posing for pictures. Scientists believe that doing this helps them save body heat while standing in cold water. It also uses very little energy because their legs can lock into position, allowing them to balance comfortably without getting tired. It's one of nature's simplest but smartest tricks. The more you know. All right, let's listen to our next few songs, starting with Heaven by Miles Smith.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
7: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupay tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye. Jazz Cash hai na.
8: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 simple installments में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
10: City FM 89 We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: 89.9
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: Hold on, special delivery coming through.
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
4: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
4: It's as easy as 03142-898989.
3: Save our number now and WhatsApp us.
4: We are
5: City FM 89.
4: You're listening to
2: Non-stop hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million USD worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
6: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
3: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉन स्टॉप हिट्स
9: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.
10: Ask yourself.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash
0: City FM 89 we're playing your song
1: You're listening to
0: Non-stop hits
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: to your song. Only on City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
3: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
4: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
7: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
8: Foreman Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan. FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
0: City FM 89.
9: We're playing your song.
10: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies, affecting their cognition, growth and future.
11: Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
2: City
0: FM
2: 89. You're listening to
12: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
0: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89, we're playing the song.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
0: City FM 89.
6: Salary ka wait ho aur salary phir late ho.
7: Aha.
6: But advance salary se tum set ho. Abhi. Paise bhijwao, mangwao ya savings banao. Abhi. Naya account bhi kal parson kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
8: पीडियाश्योर से आईलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर
9: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहाँ टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्स ऑन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर बुक नाउ एट www.aeo.com.pk
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: सिटी 89 यू आर लिसनिंग टू

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million USD worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City
8: FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
8: City FM 89.
9: Salary ka wait ho aur salary phir late ho.
8: Aha.
9: Par advance salary se tum set ho. Abhi. Paise bhijwao, mangwao ya savings banao. Abhi. Naya account bhi kal parso kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
10: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
11: नाज़रीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
12: बंद करो ना ढक्कन
13: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
14: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना
15: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
16: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
3: सिटी एफएम 89
1: यू आर लिसनिंग टू

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
5: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
6: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
7: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
8: बंद करो ना ढक्कन
9: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
10: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी Abhi Bank. Financial freedom for all.
11: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
12: Ghar baithe dil bhar ke shopping karni hai. Wo bhi kiston mein. Bas apne favorite brands ki website par payment by Yellow select karo aur pay karo 3 simple installments mein. To jo chahe khareedo. Paise aaram se de do. With Yellow by Jazz Cash.
13: City FM 89 sounds different.
1: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million USD worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
7: You're listening to City FM 89.
8: This show is brought to you by Jazz.
9: City FM 89.
8: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
10: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
11: Hire kar naya. No frost IoT refrigerator. Jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
12: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
13: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरी.
14: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
7: You are listening to City FM 89.
2: We are playing your song.
15: Salary ka wait ho aur salary phir late ho.
14: Aha.
15: But advance salary se tum set ho. Abhi. Paise bhijwao, mangwao ya savings banao. Abhi. Naya account bhi kal parso kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
2: Music, if used in the right way, has the ability to elevate

0: City FM 89.
1: It's 8 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show was brought to you by Jazz.
0: City FM 89, we're playing the song.
2: This show was brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
6: Future Sounds. City
7: FM 89.
8: Trending today.
9: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
0: City FM 89.
10: You got me going crazy!
11: Shared bundles! वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
12: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश
13: वी आर
14: सिटी एफएम 89
13: फ्यूचर सॉन्ग्स
15: वाइब विद अस योर म्यूजिक
16: डिस्कवरी फॉर द लेटेस्ट जैम्स एंड हिडन जैम्स

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: सिटी एफएम 89,
5: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन।
1: यू आर लिसनिंग टू
6: फ्यूचर साउंड्स।
7: फ्यूचर साउंड्स

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
3: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना।
5: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash।
5: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
1: डोंट एडजस्ट योर डायल, दिस इज
7: सिटी एफएम 89।
0: यू आर लिसनिंग टू
1: फ्यूचर साउंड्स। फ्यूचर साउंड्स।

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
7: City FM 89.
8: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: सिटी FM 89.
9: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
10: You're
11: listening to
12: Future Sounds.
13: Future Sounds.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
1: City FM 89.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
5: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89. वी आर
6: प्लेइंग योर सॉन्ग.
7: 89.
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: यू आर लिसनिंग टू
9: फ्यूचर साउंड्स.
10: Future sounds.
11: Stay fresh, stay lit.
12: New music drops right here.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: सिटी FM 89.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: You're listening to
5: Future Sounds.
6: Future Sounds.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
0: Coming up next.
1: Non-stop hits.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Christopher Nolan's The Odyssey has stormed the global box office, amassing an impressive $264.1 million USD worldwide during its opening weekend. The film marks the biggest debut of the director's career and the largest live-action opening of 2026. The release also surpasses the performance of The Dark Knight Rises and Oppenheimer.
8: City FM 89, we're playing the song.
9: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
1: सिटी
5: एफएम
1: 89
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
11: सिटी एफएम 89
12: आई ग्रो अप आई वांट टू बी स्ट्रांग
13: फॉर मेनी चिल्ड्रन इन पाकिस्तान दैट चांस इज ऑलरेडी स्लिपिंग अवे 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
12: I want to learn big things.
13: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
12: I want to be the fastest.
13: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
12: I want to grow up like everyone else.
13: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
14: Nurture today, strengthen tomorrow.
13: Act, a Dawn Media Initiative.
15: City FM, FM, 89.
16: No talk. Just you and the music.
17: Back to back starts now.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
1: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
2: सिटी एफएम 89।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: नॉन स्टॉप

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
2: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.